0: फुली ऑनलाइन आसान से कोर्सेज करें और लाइक अपस्किल हासिल करते हैं. आज लाइक 5 एडमिशन सिर्फ अकाउंटिंग के कोर्स में हुए हैं टोटल. मतलब तो अकाउंटिंग का कोर्स करके लोगों को पता है कि स्टेबिलिटी बनेगी, रिसेशन फ्री काम है. फुली ऑनलाइन कोर्स है, आप स्किल सीख रहे हैं, सेज 300 क्विक बुक सीख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप 30 से 100,000 की फंडिंग अपने अकाउंट में डायरेक्ट गवर्नमेंट से हासिल करते हैं एज लिविंग एक्सपेंस. आपकी फीस भी पे हो गई और गवर्नमेंट ने आपको आपके खाते में, मेरे में नहीं, आपके खाते में फंडिंग डाली 30 से 100,000, जिसका आज की डेट में हाफ पोर्शन इज नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स. ये अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं आएगी. हमें कभी ऐसा होता है ना कि यार ये मिस हो गया, काश ऐसे करा होता, काश ऐसे करा होता. अब वही 2 महीने बाद होगा, जो लोग रह जाएंगे वही बोले काश ऐसे करा होता.
1: सही बात है. तो सरांश मैं पहला नंबर दवा थोड़ा. सरांश का नंबर है 437-264-3175. सो सरांश ये पैसे सब मिल गए ते पहली गल तो कदे वापस नहीं करने. तुसी कादे लिए यूज कर सकते हो, किड़ी किड़ी चीजा लिए कोई लिमिटेशन है
0: इसमें? ना सबसे अच्छी बात यही है, इसमें गवर्नमेंट आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए फंडिंग दे रही है. हर किसी के लिए लिविंग एक्सपेंसेस अलग है. तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कहाँ कैसे यूज करें. और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है जब ऑफिस आते हैं, अच्छा ये जो पैसे मिलेंगे हमें कोर्स खत्म करने के बाद मिलेंगे, सर जी ये लॉटरी नहीं है कि आपको रेसिंग के बाद मिलेंगे पैसे. लिविंग एक्सपेंसेस वाइल स्टडिंग, आपने आज कोर्स शुरू करा, विद इन 30 to 90 days में आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट से. एक इंस्टॉलमेंट 90 days में, एक इंस्टॉलमेंट उसके 5 महीने बाद. तो आपको ड्यूरिंग द स्टडी पैसे मिलते हैं, कहीं भी कैसे भी खर्च करें. और ये जो फंडिंग है जिसका मेजर पोर्शन आज ग्रांट है नॉन रिफंडेबल, और रेस्ट पोर्शन ऑप्शनल लोन है, इसमें लाइक ये वापस अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी. कोई एज लिमिट नहीं है. हमारे क्लाइंट है जिनकी एज 30, 40, 70 years भी है. सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को ज्यादा फायदा है इसमें, उबर ड्राइवर, ट्रक.
1: अच्छा, सो गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि यार आपकी तो 40 है, आपने क्या एजुकेशन लेनी है?
0: कनाडा की यही खास बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करती एज पे, क्योंकि चार्टर ऑफ लाइफ एंड फ्रीडम है. और आपको पता है कनाडा में हर बंदा कम से कम 3-4 बार करियर चेंज करता है. 2 बार तो मतलब हमने 8 साल पहले कोई काम शुरू करा था बिजनेस. आपको पता ना कनाडा में कैसे रहते हैं फ्लक्चुएशन में. अब जो रियल्टर है वो इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस वाले कुछ और काम कर रहे हैं, चलता रहता है इसमें. तो गवर्नमेंट को ये पता है सोखे से कोर्सेज ने 2 से 3 आवर आपने पढ़ना है, और लाइक स्टडी हासिल करें, स्किल हासिल करें, डिप्लोमा हासिल करें, और फंडिंग भी अपने अकाउंट में डायरेक्ट हासिल करें.
1: वेरी गुड. सो नंबर एक क्विक है, 437-264-3175 नंबर है. ते सरांश तुसी अकाउंटिंग दी गल कीती, होर केड़े केड़े कोर्सेज ने? ते सारे यह कोर्स ऑनलाइन ने. जे मैं नायगरा फॉल च बैठा, या मैं ओशवा च बैठा, या मैं कितने दूर हाँ, मैं कितों भी कर सकता?
0: हाँ जी, ज्यादातर कोर्सेज ऑनलाइन ही ने. क्यों? क्योंकि डिमांड है इनकी. क्लाइंट्स आके यही कहते हैं, सर देखो पहले ही इतना मतलब लोग टफ टाइम से गुजर रहे हैं इस टाइम पे, तो उनको लाइक आसान से कोर्सेज चाहिए कि स्किल भी डेवलप हो और फंडिंग भी हासिल करे. तो लाइक यही चीज है, अगर आप नायरा रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, ओंटारियो में होनी चाहिए, लेकिन आपकी रेजिडेंसी ओंटारियो की होनी चाहिए फॉर आवर लास्ट 1 ईयर, एंड आप PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, एंड सबसे बड़ी बात आपकी इनकम कम है. कैनेडा इज फॉर लो इनकम पीपल. अगर आप 90,000 से ऊपर इनकम रखते हैं तो आपको डेंटल बेनिफिट कट हो जाता है. तो वैसे ही अगर आपकी इनकम 70,000 से ऊपर है, आप अमीर माने जाते हैं देश में, तो आपके बेनिफिट्स का तो जाते हैं सोशल बेनिफिट्स. तो इसलिए अगर आपकी इनकम कम है, कम कम कम है, तो ही आपको इसका बेनिफिट है $70,000 से. तो आप कॉल करें, आप ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं, स्किल हासिल करें, फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें. अगर फैमिली ऑफ 4 है तो अपटू 80,000 की फंडिंग, जिसमें से $40,000 तो ग्रांट ही है, वापिस ही नहीं करना. जो रेस्ट $40,000 है 0% पे ऑप्शनल लोन है, और 1.5 साल बाद भी उसका ब्याज दर 2.5% ही है सर पर साल का. No credit check in this.
1: Number है 437-264-3175 सराज दा. ते सराज ने पैसे बाद विच लेंदे है, जदों थोड़े अकाउंट च पैसे आ गए उदों ही पैसे लैणगे. इन्हां दी फीस बहुत ही थोड़ी है, 199 तो शुरू है. ते सराज दा नंबर है 437-264-3175. ते सराज नंबर तुसी भी दे दिओ.
0: हां जी, नंबर है जी 437-264-3175, 437-264-3175. काम होने तो बाद 199 से 499 फीस. नो कैच, नो परसेंटेज, नो नथिंग. कोई साइड इफेक्ट है नहीं, कोई मीठी बातें है ही नहीं सर. फीस यहाँ भी आई और ऑफ देयर भी इतनी है, 199 499. नंबर नोट करें 437-264-3175, 437-264-3175. 5
1: 437 2643175 437 2643175

हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतें लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान जिंदगी जिंदाबाद चढ़ दी कला दी पहचान रेडियो उड़ान प्रभ संत दे नाल

0: टीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी, कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: चैबर लगेगी नवे पुराने गीता दी
1: बातां होणगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां।
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार।
1: बिजनेस दी प्रमोशन ले आज ही कॉल करो 416-917-7763 ते 416-917-7766।

0: संधु साहब, हरियाणा शब्द कितने गलत मेरे वर्गे तो फिट हो गया। बेसिकली ये मसला भी बड़ा है ते इस मसले ते जे आमो सामने है वो पंजाब ते हिमाचल
1: हिमाचल
0: है।
1: जी, हिमाचल जी, सॉरी।
0: ते संधु साहब गल है कि खालसा शब्द ही अपने आप च, मैं बीते कल भी जिक्र किया सी कि बड़ा विशाल बड़ा ते एक ताकतवर शब्द है। जो तो खालसा एंट्री टैक्स की गल हुई मैं लगता कि दिल्ली तक धुमा पै गई कि यह कि टैक्स आ गया कितने लग गया, क्योंकि खालसा ही एक शब्द है
1: हाँ
0: संधु साहब जिस तो सरकार डर दया।
1: जी, बिल्कुल।
0: तो खालसा शब्द ही है जेडे दिल्ली दे विच साल एक बैठे रहे थे उत्थों कानून वापस करके आए सी।
1: बिल्कुल जी।
0: ये खालसा ही है जिदी कल भाजपा ने गल की थी कि महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज देना है, ये खालसा ही है। तो जो तो खालसा एंट्री टैक्स शब्द आ गया ना संधु साहब, तो फिर भाजड़ा पै गई दिल्ली तक और हिमाचल प्रदेश के शिमले तक। हालांकि केवल एक पॉइंट से 40-45 पॉइंट है जिथे पंजाब वाले पास्यों हिमाचल च एंट्री होंगी है। केवल एक पॉइंट से जरा कीरतपुर साहब तो जो असी मनाली वाले पास टर्न हुई गए, केवल एक पॉइंट से नहंग सिंह ने डेरे लाए थे, केवल एक पॉइंट से। तो कहें असी खालसा एंट्री टैक्स वसूलना है तो भाजड़ा पै गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को टेलीफोन खड़क गया जी, आ की हो गया, बंद कराओ महाराज, कहते आ की हो गया। हुण पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि अजे तक रिपोर्ट नहीं साढ़े को पहुंची, परंतु एक देखो हुण किड्डी वड्डी गल, लगभग 5-4 महीने हो गए रौला पाउंदिआं नूं संधु साहब, कि जिहड़ा हिमाचल ने जिहड़ियां गड्डियां हिमाचल नंबर तो बिना आ बाकी दूसरे किसी भी सूबे दियां हिमाचल के एंटर हो गया, उन्होंने तो कहते असी फीस मोटी फीस वसूलनी है। फीस से पहला भी वसूलते सी, मोटी फीस वाधा कर दिता 1 अप्रैल तो लागू हो गया संधु साहब। हुण जिहड़ा वो 1 अप्रैल तो लागू होया संधु साहब, उहदा विरोध चल रहा।
1: जी
0: हुण विरोध से पहला बहुत बड़े पद्धर से काफी दिनों तो वक्ख वक्ख जथेबंदियां कर रही ने, कुछ भी किसान जथेबंदियां भी, खास कर टैक्सी चालक है। हुण है भी हैरानीजनक है कि भारत में ही एक किस्म का वर्गीकरण है, एक सूबे चो दूजे सूबे च जाना ते भाई मोटा टैक्स देना पवेगा कार वाले नू, बस वाले नू, ट्रक वाले नू। जिन्हिया रिपोर्टां संधु साहब मैं इकट्ठियां कीतियां, भारत दे विच एक हिमाचल ही आ जिथे इस ढंग का मोटा टैक्स देना पैंदा जे असी एंटर करना है। हुण दूजी गल जिहड़ी संधु साहब विच जिहड़ी पंजाबियां नू सब तों वध रड़कदी है, उत्थे पंजाबी ठीक भी है संधु साहब, हिमाचल ते पंजाब दे जिहड़े गवांढी खेत्र है जिवें हुशियारपुर की गल करिए, रोपड़ की गल करिए, जा चंडीगढ़ की गल करिए, इधर पठानकोट गुरदासपुर की गल करिए, जिहड़ा नीम पहाड़ी खेत्र है, उन्होंने ते उत्थे रिश्ते बड़े सांझे है, रिश्तेदारियां ने, व्यापार सांझे है, कई हिमाचल वाले पंजाब वाले पासे व्यापार करन आउंदे है, कई पंजाब वाले हिमाचल पासे जांदे है। हुण उन्हां लई ते पंजाब वालियां लई मुसीबत बन गई कि जे गड्डी उन्हां दी पंजाब नंबर दी आ ते जे उन्हां ने अपने रिश्तेदार नूं भी मिलने जाणा ते मोटी एक फीस अदा करके जाना पएगा। हुण हिमाचल की सरकार टस तो मासून तैयार ही नहीं, वो कहती मैं ना मानू। हुण तां फिर जाके फिर जिहड़ियां गुरु दियां फौजां फौजां जिन्हां नूं असीं निहंग सिंह आखते हैं संधु साहब, उन्होंने गरा मोड़ है कीरतपुर तो जदों असीं मनाली वाले पासे नूं, मनीकरण वाले पासे नूं मुड़ीए, उत्थे कल फिर नाका लाता कि जिहड़ी भी गड्डी हिमाचल वाले पासिओं आवेगी असीं खालसा एंट्री टैक्स वसूलना है। हालांकि उन्होंने कोई बहुत वड्डी जोर जबरदस्ती नहीं की, कहें कि भाई दियो जे 50 देने 50 दियो, जे 100 देना 100 दियो, जिहड़ा कहिंदा 20 रुपए ओह कहिंदा 20 दे जा, जोर जबरदस्ती नहीं की। नाल उन्होंने कहा कि जिहड़ा पैसा आउणा सी निजी जेबां च नहीं पाउणा, असीं कहिंदे पैसा इकट्ठा करके लोक भलाई दे कारजां ते लाउणा, सरबत दे भले लई वरतांगे। हुण है ते अपने आप च चलो असीं इहनूं कह सकते कि कानूनी तौर ते ढंग ठीक नहीं है, चाहे गड्डी पंजाब दी चाहे हिमाचल नंबर दी, जे पंजाब वाले तो टैक्स वसूलिया जांदा वह भी गलत है, जे हिमाचल वालों तो नहंग जथेबंदियां वसूलदियां ने वह भी गलत है, परंतु फिर करिए ते की करिए। शांतमई प्रदर्शन हो गए, रौला पा लिया, सुनने नूं कोई तैयार नहीं, ते हुण जदों नहंग सिंघां ने अपना चौराहे दे विच झंडा गड्या ते फिर हुण चीकां पईयां ने दिल्ली तक,
1: जी।
0: कहिंदे जी खालसा एंट्री टैक्स लग गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहिंदे आ पंजाब के मुख्यमंत्री नूं आखिया कि भाई सोचदे आ असी भोरा कटौती कर दिने, थोड़ी रोक ला दें। तो मैं लगता जे अज शाम तक यह सुनेहा आ गया कि हिमाचल ने टैक्स में कुछ कटौती की है, तो फिर भाई ये सारा सिरा पंजाब दिया नहंग जथेबंदियां जाना है, क्योंकि उन्हों का खालसा एंट्री टैक्स जरा है वह नजा के हिमाचल की गवर्नमेंट को भाजना पाई है।
1: बिल्कुल जी, प्रोग्राम दी सेशन स्पॉन्सर करने हरमन

वैसे देख लो जिहड़ियां ढाडी वारां हुंदियां ते जदों सारंगी वजदी है ना, ढड ते सारंगी, किन्ना जोश आउंदा। सो ये जिहड़ियां वारां है ना, ओह सूरबीरां दे लई, योध्यां दे लई, जिन्हां ने नामणे खट्टे आ, जिन्हां ने अपनियां जिहड़ियां जानां है ओह कौम तों कुरबान कीतियां, फिर उहनां दी जिहड़ी गाथा है ओह सुनाई जांदी है, ते ढड सारंग जदों वजदी फिर कमाल ही हो जांदी है।

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर रहे हैं लक्की भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देखे गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 दे कॉल कर सकदे हो
2: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है केक्स पेस्ट्रीज मठियाईयां समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचन वाले तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो
3: A1 के चुमका लिए
1: सदीक साहब हो गए मैं बड़ी देर हुई लाया नहीं कल भी अपन हिंदी गाने लाए परसों हिंदी लाए पंजाबी गाने भी लाओ भाई हरजीत जी कई यारी मुहम्मद सदीक साहब दे दीवाने बड़े होंदे आ फैंस होंदे आ सदीक साहब दे भी उन्हां दे गीत भी जरूर लाना चाहिए प्रोग्राम पंजाबी विरसा जिथे हरप्रीत सैनी जी और राजन जी स्टूडियो चे तुहाडे वास्ते गल्लां पता सिलसिला बिल्कुल इसी तरह 12 बजे तक जारी रहेगा

0: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टावला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। तीयां दा मेला हो रहा है 21 जून नूं, उहदी जानकारी देवांगे। सब तो पहला छतरी छता रिपोर्ट हाजिर है। अज सूरज सिंह 5:37 मिनट ते आया, 8:54 ते चले जाना। मामा चंद सिंह अद्धी रातों 12 बजे आएगा ते सवेरे 8:59 ते चले जाना। अज दा तापमान 29 डिग्री तक मोस्टली सूरज चमकदा रहेगा। कल नूं मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड 28 डिग्री और सैटरडे नूं सारा दिन छतरी छता दी लोड़ पेगी। बारिश पैण दे आसार नजर आउंदे ने। तापमान 25 डिग्री। संडे नूं मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड 26 डिग्री। मंडे नूं सूरज चमकदा रहेगा, तापमान 26 डिग्री। ट्यूजडे नूं 25 डिग्री तापमान होणगे। काफी कुछ हो रहा अपने नेड़े तेड़े अते दुनिया दे विच। जर्मन तों खबर आई है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 टन कोकेन फड़ी आ, 8 टन।
1: पूरे 40 साल हो गए अपने व्याह नूं, फिर किथे सेलिब्रेट करन दा इरादा है?
2: मेरी मन्नो तापा पिंड ना चलिए।
1: धर्म नाल आ ता तू मेरे मन दी गल ही कहती है, पर इन्नी छेती टिकटां कित्थों मिलणगियां?
2: गिल इंटरनेशनल ट्रैवल तो अपने साथ वर गई साथ है उन्हां दा, अपने क्लाइंट्स दे नाल पिछले 40 सालां तो।
1: 40 सालां तो बेदाग सर्विस
3: गिल इंटरनेशनल ट्रैवल।
2: क्वालिटी सर्विस, वधिया रेट्स ते बेस्ट डीलिंग है उन्हां दी पहचान। इंडिया पाकिस्तान या दुनिया दे किसी भी कोने च करना होए ट्रैवल,
3: सर्विंग कनाडा नेशन वाइड।
2: 9056718400 और 9057968800 और विजिट giltravels.ca।
0: जे टन दी गल करिए, 1 टन दे विच 2000 पाउंड हुंदे ने ते 8 टन जिहड़ी ड्रग इन्हां ने फड़ी है।
4: देखो जी, एक ते मच्छी हुंदी है जिहड़ी पानी च रहिंदी है, ते दूसरी मच्छी हुंदी है जिहनूं वेख के मुंह च पानी आ जांदा है। इंडियन स्वीट मास्टर तो मिल दिया, आज ही चक लो।
2: कॉर्नर ऑफ मैकलॉगलन एंड रे लॉसन, कॉल 9054502800। नाउ ओपन टिल 2 AM।
5: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आहे ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब, द वन स्टॉप शॉप, 5196220660 या quicktrucklube.com। QTL, because we care.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे पाजी दिया सारी आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तोड़े इन्ने सालां दे परोसे पर पाउंड तोड़े इन्ने सालां दे परोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व कर देने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1115 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. Tusi cheap flight tickets si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne, ja tusi visa services di pal de vecho, puri family vacation Upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल आले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
8: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
9: विमला विलेज पढ़दी पीओ च जंट पढ़दा विमला विलेज विलेज विमला विलेज विलेज पढ़दी। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ थोड़ी अपनी शिप्रा गोयल, ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।
10: बिल्कुल जी, एक बार साडे सारे लिसनर्स दा बहुत बहुत स्वागत है जी, और उम्मीद करते हैं कि सारे बहुत वधिया होणगे जित्थों भी तुसी सानू सुन रहे हो, भावें गड्डियां चो कारां चो या कम्मां कारां तो। सो होप एवरीवन इज एंजॉयिंग दे डे आउट देयर। और नाल नाल जिहड़ा जी वैदर जरूर सांझा कर दवां, अज दा वैदर हैगा 28 डिग्री जिथे की जिहड़ा जी एयर क्वालिटी हैगी जी 2, ते जिहड़ा जी काफी वधिया मौसम है। मौसम दे नाल जिहड़ा जी तुसी रेडियो प्रोग्राम नू इंजॉय करना, हवा दी स्पीड 14 किलोमीटर प्रति घंटे दी रफ्तार दे नाल हैगी जी, ते नाल दी नाल जिहड़ा कि अज दिन टल जाना है 8:55 PM ते। सो ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵੈਦਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੀਅਰਸਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੀਅਰਸਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਗਾ ਸਟਾਰ ਈਵੈਂਟਸ .com ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ $30 ਹੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੰਨਤ ਨੂਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਮੰਨਤ ਨੂਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

0: चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर के इंटरसेक्शन पे मुर्दवारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473393521 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट।
2: मतलब स्वीट महल नहीं गए?
3: नहीं मैं मर जा उठे की होने
2: जीटीए दा सब तो स्वादला खाना उठे ही ता मिलता है। सही सुने भाई, जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां, पकौड़े, समोसे, टिक्कियां, व्याह होवे पार्टी या होण छुट्टियां, स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर घुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड टॉपिको। स्वीट महल, ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट।
4: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे, वे टिकटा दो ले ले। लेनिया हो या चार बिजनेस ले जाना होवे या फिर घूमन ले, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओवी रीजनेबल प्राइसेस ते, स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा, कॉल 9056781200।
5: रात में छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
6: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होण ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालां तो तुहाडी सेवा विच।
5: भई इत्थे कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
6: कॉल करो 905-874-9878।
7: बंबा गया मैं जिथे जावा मुंडे कहंदे बंबा गया।
8: जी हाँ दोस्तों, तुसी जुड़ चुके हो रेडियो प्रोग्राम सारंग दे नाल, मैं तुहाडा होस्ट दोस्त राजबीर बुपराए। ते प्रोग्राम दे विच साथ बने रहेगा 2 बजे तो लैके 3 बजे तक दा। अज्ज प्रोग्राम दे विच गल्लां बातां होणगीआं, गीत संगीत होएगा, स्वर्ण सिंह टहणा साहब पंजाब दी धरती तों खबरां लै के बिल्कुल रेडी बैठे हैं, उन्हां दे नाल गल्लबात कीती जाएगी। कल 40 दिन दी टीम आ जिहड़ी, गुरप्रीत घोगी साहब ते देवी मखसूसपुरी साहब ते डॉक्टर साहब धग्गा गुरप्रीत जी, ओह वी स्टूडियो दे विच पहुंचे। उन्हां ने बहुत विस्तार दे नाल गल्लां बातां कीतीआं, सो समें दा पता ही नहीं लगदा जी। ते अज्ज दे प्रोग्राम दे विच कुझ इक गल्लां बातां होर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

क्या बात है, कैसे हो यार? बल्ले बल्ले है, ठीक ठाक एंजॉय कर रहे हो? खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा, बड़ा मीठा जहा मौसम है, तो एक बार फिर एक सोहना दिन, बड़ी सोहनी शाम एंजॉय करने लिए आप पहुंच चुके हैं, तो इकट्ठे रौनक मेला सजाने हैं। तो स्टूडियो का नंबर थोड़ा याद है, दसण की लड़ है, आई डोंट नो। चलो कुछ एक होंगे मित्र सज्जन साढ़े नवे जड़े कहते भाजी, असं सारों का पता ही नहीं सी भी थोड़ा रेडियो आता, इस तब कह लो कि पहली बार सुन रहे, बड़ा आनंद आ रहा। सो रेडियो प्रोग्राम पंजाबी दा पिछले तुम तकरीबन ऑलमोस्ट 35 साल तो इंजॉय कर रहे हो, तो उम्मीद है कि तुम जिन्ना असी ना प्रोग्राम पेश करने वेले इंजॉय करते हैं, असी होप करते हैं कि उस तो कितने वध तुसी सुन के इंजॉय करते हो, क्योंकि देखो जिहड़ा सुनने वाला ना वो ताही इंजॉय करूगा जे पेश करने वाला बंदा खूब इंजॉय कर रहा। हुण तुसी फॉर एग्जाम्पल लै लो, जे कोई बंदा खाड़ा ला रहा, कोई कॉन्सर्ट से परफॉर्म कर रहा, जे उन्हूं आप ही नहीं मज़ा आ रहा तो ऑडियंस नूं की मज़ा आना। कोई क्रिकेट प्लेयर है, बैट्समैन है, उन्हू मजा ही नहीं आ रहा खेडते, तो वो फिर गेम भी वह चीज रिफ्लैक्ट करूगी, उन्होंने खेडन वेले नहीं मजा आ रहा, तो फिर जो देखने वाला उन्होंने कितने आना। सो यही चीजा ने जो भी करते हो ना, पूरा एन रीज नाल पूरा इंजॉय करके करो, ता ही गल बनती है। हूँ एवं आप उत्तों तो करी जाइए, वह की फायदा? सो खूब इंजॉय करना बनता, तो थोड़ी एक आवाज तो एक उस चीज की झलक नजर आवे कि बल्ले यार बंदा तो आए प्रोग्राम कर रहा है, जिवें इहदा वाकई शौक है। चलो साडा तो हैगा ही शौक है, बट होना इदा चाहिए, तो ही तुसी फिर सुन के कहने नवी यार बल्ले बल्ले प्रोग्राम सुनदा मजा आ गया। सो खैर, स्टूडियो का नंबर है 905-673-3337। कोई भी गलबात करनी है साडे नाल, कोई भी नंबर लेना साडे तो, तुसी कोई भी गीत संगीत लगवाना, गल की कुछ भी है, नंबर घुमा लो 905-673-3337 905-673-3337 ते गलबात थोड़ी साड़ी हो सकती है। ते आगे पगां पोचमियां वाले हैं, रही बच